0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: निन्ना छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, निन्ना छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, इच्छा मलाई लागेर छ स्वर्ग लोकको।

आज विक्रम सम्बत 2083 असो 24 गते शनिबार अक्टोबर 10 तारिक बुद्धिस्ट पात्र अनुसार आज दवा के बी सुमच्यू

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

sari chaya hun raja naushkai sari daulat le paripurna hos pavana jai nai pare ka gare manda khun savale duryodhan saman karnai saman danama tagat sri balaram kai sari hos sadvata kai kamama राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बड़ाले पनि कृति उज्ज्वल हो सुत सहित

जय श्री सचिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांताबाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम

तब चक चक स्वप्न सरी हो। भज नारायण भज नारायण भज नारायण सज्जन हो। विष्णु सहस्र गीता गाऊ, प्रभु का पदमा ध्यान लगाऊ। सज्जन